0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चो 14 के में बोदे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिख खई हमरो
2: खई खई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आंगी समी जो लोटरी पर दियो छामताई गुदी
2: भर दी आ भर दी लोटरी खले पर दिम बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खई बिसा खई मई विश्वास आनन फोन खले पनी आफै विवरण खई मई आपिन खबै बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खई मई आरी सुमी बैंक आफै बने आरी
4: सतर्क सन छजिर दे क्या बसेना
5: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई रेडियो आदि खुला 105.4

एसएस आदि फ्लाग हबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: मिनट ना अले हम लोग आने में 8 बजे का छ
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: सुनत ना, आइले हम लोग में देरी बजे का
1: समय को साथ में जितू सुनचा जी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल राख्नुस् है।
3: पहाडको छुक छुके दिल
4: आमा मामा कति राम्रा गीत बजेका कता राम्रा राम्रा सन्देश आएका होइन यो त साँच्चै 105.4 मेगाहर्जको रेडियो आदि खोलै रहेछ क्या हो।
5: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4।